0: मात्र डीटीएच सेवा
1: डिश होम खुशी को कनेक्शन
2: स्थानीय तह को आवाज र अभ्यास देशव्यापी गराउन नेपाली बहस में पालिका बहस पनी बिहान 6 बजे देशै भरि पालिका बहस
3: आदरणीय श्रोता हामी यतिखेर पालिका बहसमा कुराकानी गरिरहेका छौं। पालिका बहसमा चितौनको भरतपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख

0: ഇതിന്റെ
1: अत्याधुनिक सिटी स्कैन सेवा अब तुलसीपुर को सुलभ सिटी स्कैन सेंटर में।
2: हजुर, वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठ तथा दक्ष अनुभवी रेडियो टेक्नोलॉजिस्टहरूबाट
3: शरीर का विभिन्न भाग में भएका ट्यूमर, कैंसर, नाक कान घाटी, एपेन्डिक्स, मृगौला, अधिक टाउको दुखाई लगायत सीटी स्कैन को माध्यम यकीन र अवस्था को पहचान सहित उपचार करी ढुक्क रहनुहोस्।
4: पैसा र समयको बचत सँगै सिटी स्क्यान सेवाका लागि सुलभ सिटी स्क्यान सेन्टर तुलसीपुर छ, घोराई रोड हात्ती खुवा चोकदेखि 20 मिटर उत्तरतर्फ तुलसीपुर दान।
3: जुनसुकै बेला सम्पर्कका लागि फोन नम्बर 082-5904-01, मोबाइल नम्बर 97-487-060-11 र 98-578-40-601।

सर खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सबसे पहले एंड ऑफ स्टोरी।

आधिकारिक विक्रेता मोहिनी ट्रेडर्स तुलसीपुर 5 ग लाइन दाङ रौनियार पोलिक्लिनिकको पछाडि कुनामा। मोबाइल नम्बर 9808 64 0 71।